ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। श्रोताओं, सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत समय रहेगा सुबह 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत।

युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी फोन करें गीत सुने का समय रहेगा शाम 5 बजे और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा शाम 7:30। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग्स। श्रोताओं रात्रि 8:30 पर समय रहेगा लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर का और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात्रि 9:25 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। श्रोताओं रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर की। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश हुई, आज पूर्वी जिलों में हल्की बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कल जयपुर में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। उन्होंने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत के अनुसार चिकित्सकों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी चिकित्सा संस्थानों में 3 महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी के लिए भी कहा गया। बैठक के दौरान मौसमी बीमारियों के मद्देनजर दवाओं और जांच सुविधाओं की भी नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में डेनमार्क के राजदूत रास्मस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन के साथ बैठक के दौरान बताया कि वर्ष 2020 में स्थापित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पहला 5 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है। इस उपलब्धि को देखते हुए अब नए एक्शन प्लान पर काम करने की तैयारी है। बैठक में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और नदी पुनर्जीवन के क्षेत्रों में डेनमार्क के अनुभवों का

0: कार्यकर्ताओं की बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश की शिक्षा से जुड़े दो नवाचारों खुशी शाला खुद की खोज और एआई आधारित दक्षता आकलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच शिखर सम्मेलन में दोनों नवाचारों में तकनीक के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थी केंद्रित प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। खुशी शाला खुद की खोज विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक कक्षा वातावरण पर केंद्रित है, जबकि एआई आधारित दक्षता आकलन से विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का आकलन कर सुधारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाया जा रहा है। कल शासन सचिवालय में राजेश यादव और राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने दोनों पुरस्कारों के सम्मान पत्र मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को भेंट किए। देश में मोटे अनाज यानी श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 से 2026-2027 की अवधि के लिए केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ PLISMBP प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: केंद्र सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने के बाद श्री अन्न को लेकर वैश्विक जागरूकता बढ़ी है। वहीं मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया दूर करने के लिए सप्ताह में कम एक बार श्री अन्न अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के माध्यम से मिलेट आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी भी दी जा रही है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। अब आकलन वर्ष 2026-2027 के लिए ऐसे करदाता 31 अक्टूबर की बजाय 21 नवंबर 2026 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। ये छूट आयकर कानून के तहत ऑडिट के लिए निर्धारित करदाताओं को मिलेगी। CBDT ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लंबित ई चालानों की राशि वसूलने के लिए बिजली बिल के साथ चालान की राशि जोड़ने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इससे बकाया चालानों की वसूली बेहतर हो सकती है। न्यायालय ने लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन के पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया। पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून की विदाई के बीच जैसलमेर जिले में प्रवासी पक्षियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। सुदूर इलाकों से कुर्जा पक्षियों के दल यहां पहुंचे हैं और अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: टोकन क्षेत्र के खेतोलाई गांव स्थित लीलालाई तालाब पर कुर्जा पहली बार अटखेलियां करती नजर आई है। तालाब पर कुर्जा के पड़ाव डालने से स्थानीय ग्रामीणों और पक्षी प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला है। कुर्जा दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों में शुमार है। अत्यधिक बर्फबारी और हार्ड कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए ये पक्षी मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया से दक्षिण की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के खुले मैदान, नमी और शांत जल स्रोत इनके प्रवास के लिए सबसे मुफीद ठिकाना साबित होते हैं। मानसून के बाद तालाबों में लबालब पानी और कीट पतंगों व चुग्गी

0: की प्रचुरता इनके लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कई इलाकों में बारिश हुई। राजधानी जयपुर में कल शाम तेज हवाओं के साथ करीब आधा घंटा बरसात हुई। शहर में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बारिश हुई। पुरानी चुंगी और चौमू में ओले भी गिरे। वहीं सीकर के लोसल में सबसे अधिक 47 मिलीमीटर बारिश हुई। दौसा, चूरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर और टोंक में भी बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से धीरे धीरे कम होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर की। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। आज पूर्वी जिलों में हल्की बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत वंदना की पहली प्रस्तुति अनूप जलोटा की आवाज में।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री राम कुमार तिवारी, जो कि बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। गद्य में और पद्य में दोनों पर समान अधिकार है। गद्य भी लिखा है आपने, पद्य भी लिखा है, और इसके अलावा आप समाज सेवी के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहे। वरिष्ठ जन हैं और इस पूरे नागौर जिले में जो कि लाडनू हैं, उस लाडनू क्षेत्र में विशेष रूप से आप सक्रिय हैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और साहित्य सेवा जो आपने की है वो भी बहुत ही सराहनीय है। आज हम इन्हीं विषयों पर इनसे बात करेंगे। तिवारी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: तिवारी साहब, अगर हम आपकी साहित्य यात्रा की बात शुरू करें तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप साहित्य की ओर प्रवृत्त हुए, कि हमें साहित्य लेखन चाहे गद्य हो पद्य हो, कब से आप लिख रहे हैं और लगभग अब तक आपने कितनी पुस्तकें गद्य पद्य जो भी है लिखी।
2: हाँ, देखिए गोयल साहब, मेरा साहित्यिक जीवन है वो विद्यार्थी काल से शुरू हो गया था। मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तब भी भगवान की दया से मुझमें यह ऊर्जा थी कि कोई डिबेट होती तो मैं बहुत सुंदर बोलता। कॉलेज में और बीएड और बीएसटीसी मैंने की थी, वहाँ भी जहाँ भी डिबेट हुई बहुत सुंदर बोलता था, और आज भी मैं उद्बोधन देता हूँ, बौद्धिक देता हूँ, विद्यार्थियों के लिए देता हूँ, और गांव में जो सत्संग वगैरह होती है, मेरा गीता है वो मेरा एक प्रिय ग्रंथ है और मैं स्वाध्यायी हूँ। तो सबसे पहले 1964 में मेरी एक कहानी खून का रिश्ता जोधपुर से एक साप्ताहिक पत्र निकलता था जनगण
1: जी,
2: उसमें मेरी पहली कहानी खून का रिश्ता प्रकाशित हुई थी और बहुत चर्चा हुई। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था कि भई ये 17-18 साल के तिवारी जी इतना बढ़िया लिखते हैं
1: जी।
2: उसके बाद में क्या है कि आध्यात्मिक जीवन से कुछ ज्यादा जुड़ा हुआ था। आपने देखा भी होगा नागौर जिले में अपने यहाँ जायल तहसील में एक माता जी ददीमती माता जी का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है
1: जी।
2: भाई कहा जाता है वो 2000 साल पुराना मंदिर है, शक्तिपीठ है
1: जी।
2: तो वहां से मैं जुड़ा हुआ था, हमारी कुलदेव भी है। तो सबसे पहली मेरी प्रकाशित पुस्तक है ना 1998 में ददीमती माता जी नाम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, और उसमें माता जी का पूरा विवरण है, प्राचीनता वगैरह
1: जी, उसका जो इतिहास है।
2: हाँ, इतिहास है
1: जी।
2: और उसके साथ एक मेरे गांव में रंगनाथ भगवान का मंदिर है, तो उसे दिव्य देश की उपाधि है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बाकी दिव्य देश के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि कांची पीठ में एक पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति है। वो मूर्ति अगर किसी जगह प्रतिष्ठा पर आती है, हमारे गांव में रघुनाथ भगवान का मंदिर बना तो वो मूर्ति वहां से प्रतिष्ठा के लिए आई थी। वो जमाना था 150 साल पहले का, बैलगाड़ियों से, घोड़ों से और से

0: मार्ग में उस मूर्ति की पूजा होती थी, सब कुछ होता था।
1: हुँ.
0: तो वो मूर्ति उस प्रतिष्ठा के समय उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई थी
1: जी.
0: तो इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में इस रोल को दिव्य देश ये संज्ञा दी हुई है।
1: रोल ये गांव है या नागौर में? आप निवासी
0: हैं? हाँ, मुख्यतः मूल निवासी में रोल का ही हूँ। तो वो दिव्य देश की उपाधि मिली थी, तो वहाँ 100 साल बाद कोई संपर्क प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस मंदिर से संबंध मैंने 3 स्मारिकाओं का संपादन किया था, जिसमें अपने पूरी भौगोलिक स्थिति, जोधपुर नागौर से क्या रोल का संबंध है, रोल क्या था, कहाँ से हुआ, काफी तो ये हुआ
1: जी। तो आप जो साहित्य की बात हम करें, आपने साहित्य सृजन शुरू किया, लगभग कितनी पुस्तकें आपने अब तक लिखी है?
0: देखो, मेरी आपके गद्य में सबसे पहली पुस्तक थी यशस्वी बनकर जियो
1: जी।
0: और उस पुस्तक को बड़ी प्रतिष्ठा मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पुस्तक की 2000 प्रतियां खरीदी थी। उन्होंने 5-10 ये मोटिवेशन की जो होती है ना, प्रेरणादायक पुस्तकें, तो उन्होंने प्रकाशक से कई पुस्तकें मंगाई और मेरी पुस्तक का चयन हुआ था। तो मेरी मोटिवेशन हिसाब से वो पुस्तक थी। और उसके बाद एक पुस्तक भी अभी निकली थी आपके, सफलता और सिद्धि आपका लक्ष्य। और इसी प्रकार एक अभी निकल छप गई, वो भी नया सूरज। तो ये तीनों वॉल्यूम में जिसमें 50-55 लेख हैं, तो सारे के सारे लेख के युवाओं को, वृद्धों, मतलब हाउ टू लिव, जीने की कला आप कह सकते हैं, तो उसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला था
1: जी।
0: फिर मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ कि भाई संतों से और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे आसपास के 4 संत जिनकी जीवनियां मैंने लिखी।
1: अच्छा।
0: और एक विशेष उल्लेख करूंगा, शायद आप नागौर में रह रहे हैं, आप नागौर एडिशनल डायरेक्टर हैं आकाशवाणी के, तो जरूर आपने नाम सुना होगा, एक सुदर्शन जी शर्मा थे जिन्होंने पूरा जीवन नागौर कांकरिया में सेवा दी थी। उन्होंने बहुत बड़े उच्च कोटि के थे, वो कोई सीमा नहीं उनका था, जीवन त्याग, बस इट इज गिव देन टेक, देना है सब कुछ है, लेना कुछ नहीं है, बड़ा विचित्र जीवन था। तो उनके जीवन पर मैंने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो एक विलक्षण संत का जीवन संगीत और एक अलौकिक महात्मा श्री सुदर्शन जी। फिर लाडनू गया एक दूजा आश्रम है, वहां मेरे गुरुदेव हुए थे पूर्णानंद जी महाराज, उनकी जीवनी लिखी। चालासर के पास एक स्थान है गाड़ोदा, वहां पर एक बाल जती करके महान संत हुए थे, तो उन पर जीवनी लिखी। एक आपने नाम सुना नागौर के पास भदवासी करके एक गांव है, भदवासी, तो वहाँ एक संत हुए थे, सताई हुए थे, मूर्तिराम जी महाराज, उनके जीवन पर भी एक लिखी। तो 5 तो मैंने संतों की जीवनियां लिख दी
1: जी।
0: मेरे खुद के ये 3 आपके ये हो गए गद्य पे
1: जी।
0: और पद्य में मेरे है एक तो मणि पुष्पक, जिसमें कविता संग्रह है मेरा, और अभी एक लिखा मैंने सावधान वनमाली, वो भी पद्य में सावधान वनमाली। तो मैंने उसका सावधान वनमाली इसलिए ना वो शीर्षक दे दिया, उसमें एक मुक्तक है कि सावधान वनमाली एक तरह पी क्या सिंचे, जरा उनको भी संभाल जो रह गए हैं पीछे। उसमें इसी प्रकार के हैं कि बैठे हैं विश्वास जमाए कभी कोई पीठ थपथपाएगा, बैठे हैं विश्वास जमाए कभी कोई पीठ थपथपाएगा, वो खेवटिया है भव सागर का, नाव खाली लेकर थोड़ी जाएगा, वो खेवटिया है भव सागर का, नाव खेली लेकर थोड़ी जाएगा। इसी प्रकार इस नश्वर संसार को लेकर के या हर चीज बह रही है, हर चीज का क्षरण हो रहा है, हर चीज, मतलब आप हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है ना और रिकॉर्डिंग होगी ना, तब तक हम कुछ न कुछ घट चुके होंगे,
1: बिल्कुल प्रतिक्षण
0: प्रतिक्षण जा रहा है। तो
1: लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे,
0: कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो उससे आपके संबंधित एक मेरा मुक्तक है कि यहाँ केवल पानी नहीं बह रहा, यहाँ केवल पानी नहीं बह रहा, हर वस्तु बह रही है, हर वस्तु बह रही है, कुतुब मीनार हो या चीन की दीवार, बनी उसी दिन से डह रही है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बनी उसी दिन से,
1: बिल्कुल जिस दिन बनी उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी,
0: उल्टी गिनती शुरू।
1: ये जो संसार नाशवान है, नाश होना है, तो जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन घट इसलिए
0: नई चीजें बढ़ रही है, बाकी जो जिस दिन बढ़ी ना
1: बहुत ही गहरी बात है,
0: उस दिन से घट रही है। जैसे आप देखिए कि न पथ बदला न वाहन बदला, न पथ बदला न वाहन बदला, यात्री सारे बदल गए, न पथ बदला न वाहन बदला, यात्री सारे बदल गए, दिखने को तो पेड़ वही दिखता है पर पत्ते सारे बदल गए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: दिखने को तो पेड़ वही दिखता है पर पत्ते सारे बदल गए।
1: जी जी, बहुत बढ़िया।
0: इसके अलावा एक मेरी पुस्तक सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक है वो है देव दर्शन
1: जी।
0: भगवान की दया से आप भारतवर्ष के प्राय प्राय सभी तीर्थों में मेरा जाना हुआ। हम दो दो पत्नी और मैं दो दो खूब घूमे थे सब जगह। तो एक पुस्तक लिखी थी देव दर्शन, और उस पुस्तक पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार 2012 में मिला था। यानी वो 150 पृष्ठ की जो पुस्तक है देव दर्शन, उसको अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप बीच में नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा। आपको ऐसा लगेगा बस मैं बिल्कुल जुट गया हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर हो, और एक स्थान है आपके देखो नवदीप
1: जी,
0: कलकत्ता से आगे नवदीप है। अच्छा। वहां तो बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, बिल्कुल टापू है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो भगवान ने मुझे वहां जाने का भी मौका दिया, तो वो आपके इनके चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है।
1: अच्छा।
0: चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, तो हम पति पत्नी वहां भी गए थे। और बड़ा देखो मेरा एक विश्वास है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। प्रकृति किरे माणानी सर्विषय गुण विभागसु अहंकार इमुडात्मा करता हम मन्यते। प्रकृति ने सब कुछ कर रखा है, अहंकारी लोग मूड लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो मुझे भगवान ने श्रेय भी दिया, प्रेय भी दिया, मेरे 17 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।
1: अच्छा।
0: अब तक 17 पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है, और ईश्वर की दया से। बाकी मेरा मानना जो मेरा, अगर आप पूछना चाहेंगे कि मेरी फिलोसॉफी क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मेरा चिंतन क्या है, तो मैं थोड़े में यही कहना चाहूंगा कि हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। भगवान ने जो आपको कला दी है ना, उसका आप 1-2% भी काम में नहीं ले रहे हैं, और इसका कारण यह है कि हम केवल संसार में फंसे हुए हैं। मतलब पास का लाभ और हानि देखते हैं, केवल पास की लाभ और हानि देखते हैं, जबकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं हैं।
1: बिल्कुल।
0: मुझे स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य बहुत प्यारा लगता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का किसी स्थान पर पहुंचने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। अगर एक आदमी आसमान में उड़ता है तो दूसरा भी उड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का तो दूसरा भी बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या है, अपन बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिफल कहते हैं ना, तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं। तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं,
1: और जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको हम भूल जाते हैं।
0: याद ही नहीं आता कभी, कभी याद ही नहीं आता है।
1: जी, जी।
0: किसी आदमी ने आपको नमस्ते कर लिया तो खुश, नहीं किया तो नाराज।
1: जी बिल्कुल।
0: अब इतनी छोटी छोटी बातों में आप जब मिल जाओगे तो मानव जीवन तो
1: बिल्कुल
0: बहुत बड़ी ऊंची, बहुत बड़ी ऊंची चीज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अरे जिस
1: बहुत ही संकीर्ण दायरे में मतलब हम जी रहे
0: हैं,
1: जबकि जो दायरा है हमारा वो सोच का दायरा विस्तृत होगा यदि, तो हमारा दायरा अपने आप बढ़ेगा। और कुछ आप क्षणिकाएं भी लिखते हैं, आपने कुछ अच्छी अच्छी क्षणिकाएं जो रोचक भी हों और जो कि मतलब लोगों को अच्छी भी लगे, और कुछ दो चार लाइन में जो अर्थ समझ में आ जाता है और गुदगुदाता भी है और उनको लोगों को मतलब सिखाता भी है, समझाता भी है, तो वो कुछ मुक्तक भी, कुछ वो जो क्षणिकाएं हैं वो भी हम आपसे चाहेंगे कि कुछ आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं, ताकि कुछ उनको भी लाभ इससे मिले और जो एक उसके मर्म छिपा है उस बात के अंदर वो समझे उसको।
0: बिल्कुल। मैं मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी लिखता हूँ
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे जन्म राजस्थान को लेकर 2-4 लाइन बताऊँ आपको कि यहाँ क्या हुआ है। पूंजीगत बाजार है ना, औद्योगिक मार्केट, तो वहाँ क्या है कि लाख को कहते हैं पेटी।
1: अच्छा।
0: लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ को कहते हैं खोखा।
1: शाब्दिक
0: तो करोड़ कहते हैं खोखा। तो 4 लाइन आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोग खोखा की खातर पचपच मरे, लोग खोखा की खातर पचपच मरे, अट खेत खेत में खोखा है, अट खेत खेत में खोखा है, राजस्थान नु ऊंची कोई धरती हुए, सपा झूठा धोखा है।
1: क्या बात है,
0: सपा झूठा धोखा है,
1: बहुत बढ़िया।
0: इसी प्रकार एक कहावत है
1: जी,
0: ऊंट चढ़ाने कुत्तो खावे। राजस्थानी भाई तो सब समझ जाएंगे, यानी बिल्कुल शेप है तो भी दुर्घटना हो गई, ऊंट चढ़ाने कुत्तो खावे। तो क्या हमारे गांव में एक चौधरी नई नई मोटरसाइकिल लाया था, और वो खेत से आ रहा था गांव की तरफ, बीच में कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा राम राम चौधरी, राम राम राम राम, तो वो ध्यान चूक गया और नीचे गिर पड़ा।
1: अच्छा
0: मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा, तो गिरते ही वो तो मोटरसाइकिल को देखा ही नहीं और उस व्यक्ति के पीछे भगा कि इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। तो लोग पूछो।

0: यो कही कि यो कही होली नहीं दिवाली नहीं ओ मारो रामासामा कर्या केंका होली नहीं दिवाली नहीं वो रामासामा कर्या केंका
1: जी।
0: तो उस घटना को लेकर चार लाइन उद्दत हो गई कि फटफटिया हूँ अपन आप पड़िया फटफटिया हूँ अपन आप पड़िया सामला ने धमकावे इन्हें कहवे ऊंट चिड़ा ने कुत्तो खावे
1: क्या
0: इन्हें कहवे ऊंट चिड़ा ने
1: कुत्तो खावे बिल्कुल
0: देखो बिल्कुल छोटी शिक्षण का देखिए के सुई सुई डोरा में करी खारी सुई डोरा में करी खारी बिन फसार आप निकल गई कपड़ा सिलाई होता है ना सुई डोरा में करी खारी बिन फसार आप निकल गई आ कहीं होशियारी
1: सही बात है बिल्कुल
0: के कुंची तू हद कर गई कुंची तू हद कर गई एक आंटा में ताला को मुंडो बंद कर गई
1: बिल्कुल सही बात है जो हम कहते मुंह पर ताला लगाना और वो चाबी जो है वो ताले का
0: एक
1: उसमें
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल और लोगों के स्वभाव और उसको लेकर भी आपने कुछ शनिकाएं लिखी हैं जो आप जिक्र भी कर रहे थे अभी कि किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं और वो किस प्रकार से उनका बिहेव होता है दुष्ट और सज्जन जो है उनकी प्रकृति को लेकर भी कुछ शनिकाएं आपने लिखी
0: है जी कि कुछ लोगों का दूसरों को दुख देने का होता है स्वभाव कुछ लोगों का दूसरों को दुख देने का होता है स्वभाव चोंच भी वही मारते हैं जहाँ पहले से यह घाव
1: चोंच भी वही मारते हैं जहाँ पहले से हो घाव
0: पहले से यह घाव
1: यानी कि वो अपनी बदमाशी में कोई कमी नहीं रखते
0: हाँ अगला तो वैसे ही दुखी है चोंच वहाँ मारी है जहाँ पहले ही घाव है वहाँ पर उसने और चोंच
1: यह है वो दुष्ट स्वभाव के लोग
0: और गरीबों पर देखो एक के पास अरब है एक के पास अरब है एक अरब लिख नहीं पाता एक के पास अरब है एक अरब लिख नहीं पाता पता नहीं दुनिया का सारा धन एक और ही क्यों जाता पता नहीं दुनिया का सारा धन
1: सही बात
0: एक और ही
1: क्यों जाता बिल्कुल बिल्कुल
0: देखिए आप चार पंक्तियां कि रुखी सुखी मिले रुखी सुखी मिले पर मिले जरूर रुकी सुखी ही मिले पर मिले जरूर लोग नालियों में अन्न ढूंढे इसमें हमारा भी है कसूर
1: बिल्कुल सही बात है
0: इसमें हमारा भी है
1: कसूर ये जो खाद्यान्न की हम बर्बादी करते हैं उसके लिए बहुत ही सटीक है दो लाइन में समझ में आ रही है बात की क्या कहना चाहते हैं और समझने वाले के लिए तो इशारा काफी तो हम वास्तव में बहुत से काम जाने अनजाने से करते हैं जो कि एक रचनाकार की दृष्टि से एक साहित्यकार की दृष्टि से आपने उसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और उन चीज़ों को अगर हम केवल मनोरंजन और साहित्य की दृष्टि से नहीं अगर उनको जीवन में उतारें उससे को सीख लें तो जो रचनाकार साहित्यकार लिख रहे हैं वो इस समाज को देखकर ही यहाँ की दशा को दिशा को देखकर ही लिख रहे हैं
0: बिल्कुल
1: तो वो कहीं से काल्पनिक बातें नहीं है तो अगर उन चीज़ों को और जो आपने लिखा है वो तो बिल्कुल ही यथार्थ है यथार्थ का चित्रण आप करते हैं तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जो साहित्यकार हैं हमारे वो समाज के मार्गदर्शक भी हैं साहित्य रचना जो कर रहे हैं समाज के मार्गदर्शक हैं पथ प्रदर्शक हैं तो साथ में आप साहित्यकार के साथ में आप मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं लेकिन आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं तो थोड़े से उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से आप अपना योगदान मानते हैं कि क्या आपने किया है क्या करने की इच्छा है और किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति एक समाज के अंग के रूप में अपना योगदान समाज को आगे बढ़ाने के लिए दे सकता है
0: शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ पूरा जीवन शिक्षक के रूप में बिता है तो मेरा मुख्य जो है ना झुकाव के दो लगाव के दो लक्ष्य के दो मैं विद्यार्थियों के प्रति बहुत झुका हुआ हूँ मुझे कोई भी विद्यार्थी हो वो मुझे मेरे पुत्रवत लगता है बहुत प्यारा लगता है मुझे कहीं भी मालूम पड़ जाए कि वो विद्यार्थी कुछ तकलीफ में है तो मैं उसका सहयोग करने का पूरा प्रयास करता हूँ विद्यालय में जाता हूँ बच्चों को प्रेरक घटनाएं सुनाता हूँ दृष्टांत देता हूँ कि वे अपने जीवन को ऊंचा उठाओ छोटी छोटी बातों से दूर रहो और हमारे समाज में एक पत्रिका निकलती है दधिमती करके तो उसका मैं वर्षों तक संपादक रहा हूँ आज भी हूँ तो उस संपादन में भी मैंने ठीक है समाज की आपके सूचनाएं हैं वो है उत्सव वगैरह होते हैं, लेकिन मेरा जो संपादकीय होता था वो

0: जो मुझे लिखना होता था वो केवल मैं प्रेरक उद्बोधन प्रेरक लेख लिखा करता था
1: जी, जी।
0: ताकि हर एक को प्रेरणा मिले। और अगर आपको समय हो तो एक छोटी सी बात मैं आपको और कह सकता हूँ
1: जी
0: है? ये घड़ी का नीचे वो क्या
1: जी, पेंडुलम
0: पेंडुलम होता है
1: जी।
0: तो जब वो मिस्त्री ने या कारीगर ने उत्पादनकर्ता ने जब घड़ी बनाई तो उस पेंडुलम ने कहा कि मुझे क्या करना होगा, मेरा काम क्या है। तो उसने कहा भी तुझे हर सेकंड में एक बार हिलना होगा, हर सेकंड में एक बार हिलना होगा। तो घबराया कि हर सेकंड में एक बार, एक मिनट में 60 बार, एक घंटे में 36, 4000 बार, और 24 घंटे में कितना होगा, ये काम तो बड़ा विकट है। तो घड़ी साहब ने कहा बनाने वाले ने कि बेटा तू इसकी चिंता मत कर, तेरा काम तो इतना ही है, एक बार हिलना है बस, ये काउंटिंग मत कर। तू काउंटिंग करेगा तो तू अभी मर जाएगा, भैंसे चला जाएगा। तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ भाई जीवन को आगे ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसी काउंटिंग मत करो,
1: बस निरंतर प्रयास करो।
0: हाँ आज हो आप तो आज को कहते हैं ना कल कौन इतना साहूकार है कि आज की बंदूक उसके कंधे पर रख दू है, कल कौन रहा इतना साहूकार है आज की भरी बंदूक उसके कंधे पर रख दू, कल की मत सोचो। आज जहाँ हो जिस जगह हो, स्वामी रामतीर्थ का एक छोटा सा वाक्य बड़ा पसंद है कि अगर आपको आपके पैरों के नीचे की धरती स्वर्ग से बढ़कर नहीं लगती है तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लो। जहाँ हो प्राप्त का आदर
1: उस पर गर्व करो, उसका सम्मान करो और उसका महत्व समझो। जो प्राप्य है उसका लाभ उठाएं और जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन उसके पीछे
0: भागे नहीं
1: और चिंता नहीं करें।
0: और अगर आप सही हो तो अपने आप प्राप्त होगा
1: जी बिल्कुल।
0: अगर आप सही हो,
1: आप पात्र हैं तो बिल्कुल मिलेगा,
0: बिल्कुल होगा। जैसे आप उदाहरण के सोचो, अगर कोई एक मिस्त्री है, बढ़िया मिस्त्री है और वो शहर से 5 किलोमीटर दूर है,
1: बिल्कुल
0: उसका कारखाना उसका वर्कशॉप 5 किलोमीटर शहर से दूर है, लेकिन लोग पूछ करवा जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: अगर आपके पास कुछ है दुनिया अपने आप आपके पास आएगी,
1: बिल्कुल
0: पूछना पड़ेगा दुनिया को
1: जी जी है? तो तिवारी साहब बहुत ही प्रेरक बातें आपसे हुई हैं, बहुत ही साहित्य से लेकर और जीवन दर्शन तक जो आपकी सारी चीजें बहुत ही प्रेरक हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये सारी बातें बहुत अच्छी भी लगी होंगी और इन बातों से कुछ सीख कर वो उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे जो आपने बातें की आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी श्री राम कुमार तिवारी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का, गीतकार समी, फिल्म आशिकी।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोतों, कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बोल इंदिवर की आवाजें किशोर कुमार और सपना की फिल्म जांबाज़।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत जतिन ललित का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म मोहब्बतें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म साहिबा से, आवाजें अनुराधा पाडवाल और जोली मुखर्जी की, संगीत शिव हरि का, गीतकार आनंद बख्शी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत।
1: सोचो कभी।
0: कार्यक्रम का पहला गीत शान और निहिरा की आवाज में, फिल्म शलामे इश्क।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: तरंग।
1: पिनाज मसानी की आवाज है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज्म में।

0: खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है। रंग

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, फिल्म आज की आवाज।

0: प्रभात वाह, बहुत
1: अरे भाई तालियां उनके लिए।
2: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

दिल लाया मैं बचा के पंजाब से, दिल लाया मैं बचा के पंजाब से।

लाया मैं, दिल लाया मैं बचा के पंजाब से। कितना प्यार देखो मुझको जना।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: या आसमां को बढ़कर राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर पहुंचेगा।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 5 नए स्थल और श्रृंखला तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे भारत के स्थलों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। नवनिर्मित स्थलों में बाघ गुफा चित्रों की बौद्ध भित्ति चित्रकारी, चंबल घाटी के मंदिर

0: समूह गुप्त काल की उदयगिरी गुफाएं और गिन्नौरगढ़ की जनजातीय विरासत शामिल है। इसमें सत्याग्रह स्थल भी शामिल है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाला श्रृंखला श्रेणी का अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये नए स्थल भारत की विरासत की असाधारण विविधता को दर्शाते हैं। श्री शेखावत ने कहा कि ये प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की सभ्यतागत विरासत को वैश्विक मंच पर संरक्षित, सुरक्षित और प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा में स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बूंदी और कोटा के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री झालावाड़ के कोलाना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। शाम को श्री शर्मा का अजमेर के किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। अध्यक्ष सहित 6 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के बाद आज दोपहर में मतगणना की जाएगी। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने आरसीए चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मतगणना के बाद चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। चुनाव के लिए कुल 30 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले कोई भारतीय महिला ट्रैप या स्केट निशानेबाज एशियाई खेलों में व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सकी थी। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के भारू गांव में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा और पोषण अभियान का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खेचर ने कहा कि बच्चों के विकास और अच्छे संस्कारों की नींव बचपन में रखी जाती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सावित्री कृष्णिया ने आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार वितरण के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास और शाला पूर्व शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी, गोद भराई, अन्नप्राशन और प्रवेश उत्सव की रस्में भी हुई। जयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 575 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां दी गई हैं। ये निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी की बैठक में लिया गया। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलिवेटेड रोड, जल निकासी, फुटपाथ और सेक्टर रोड सहित कई कार्यों को मंजूरी दी गई। गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड के लिए लगभग 251 करोड़ रुपए और कालवाड रोड से बांडी नदी तथा निवाई रोड क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए 176 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा रामनिवास बाग में फूड एरिना, विद्याधर नगर में एमआईसीई सेंटर, मानसरोवर के शिप्रापथ के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज तथा फुटपाथ कार्यों को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
2: हाँ।
3: और

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं करता हूं। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी है कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफर की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह मैं 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद मैं अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है, और यह खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है। सोचिए अगर यह खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और खास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे, और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाजें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है, अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

दिया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

में आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया द होल थिंग इज दैट भैया सत्य

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या आपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम

हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

0: ಆಶಿಕನ್ ತಾವಾಶಿಕನ್ ತಾವಾಶಿಕನ್।
1: बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूं तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि

शरीर को ही नहीं रख सकते क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई, और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है, और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है? चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए, अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी और महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

निभाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं।

0: रंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूं कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही ना होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

0: करती है।
1: ये बात और है जो तेरी आन बान में है,
2: साथ गाता भी है मम्मी।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब आप हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहन कर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी इस गीत में, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

0: पड़ोसन।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है, चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ, और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है, और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और महमूद की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल

29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है। दिल।

चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपने मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का

0: करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजाति

0: जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिला लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह

0: कैसे करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सी रानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: ये है बाबर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है रोशन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना, और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी है और मंजरी भी है और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है।
2: और
1: आज के विषयों की बात कर लें हम सबसे पहले।
2: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की बात
1: अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें, तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती
2: वैसे
1: है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजर, ये गाना हमने सुना दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत क्या बात है,
1: बात लिखी है।
0: अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग

0: गई
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन
0: हाँ
1: बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर
0: जी
1: हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है। तो
0: बिल्कुल
1: इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
0: और
1: हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसी और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए। यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है।
0: जी
1: तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया था, लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहां ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है, रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है, बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं चीजों का।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग

0: प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
1: एक साथी हमारे
0: जी
1: लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है, तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने
0: हाँ,
1: लिखी
0: एक
1: है।
0: लिखते हैं कि मंजू जी कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फवारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर
1: बिल्कुल।
0: तो दिखता
1: एक
0: है।
1: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद। और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और
1: जी
0: अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफबीट यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफबीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य रहा। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट्स में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, दूसरा जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, दूसरा जब उनका घर वही है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेन्स एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटेलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी,
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है
1: जी,
0: अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: तो मंजरी गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल। और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती है बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर

0: उनकी मैं जाते हैं वहां की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहां की उनकी बात की। वहां दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है। तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है, वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और
1: बिल्कुल
0: देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहां खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती है, बहुत
1: बिल्कुल
0: तरह के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो
1: तो
0: लूं कम से
1: कैसे
0: कम।
1: खा सकते हैं आप
0: हाँ,
1: सोचिए
0: जबकि
1: जरा
0: उसके
1: जी
0: पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है। और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे
1: हाँ वो
0: लगता है।
1: तो खैर ये अपना सोचना है, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टॉल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई। तो ठीक है, आप उन्होंने लगाया ये, आप उनको अपना अपने तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है, खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का
0: बिल्कुल।
1: भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम
0: आयोजन
1: किया
0: किया है।
1: है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल।
1: उसको व्यर्थ ना जाने
0: एक
1: दें।
0: साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में, बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना,
1: जी
0: तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये
1: बिल्कुल
0: सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा
1: नहीं,
0: दिल
1: फेंक
0: नहीं करता है फेंकने
1: बिल्कुल,
0: का,
1: फेंकना
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं
0: हमारे भी
1: चाहिए
0: होश उड़ जाते
1: जी बिल्कुल
0: हैं।
1: सही आपने कहा है। और देखिए, हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज़ है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं। चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप
0: डोसा
1: उसमें
0: जैसा।
1: डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की, तो
0: कटलेट भी बनते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए
0: हाँ
1: कि वो
0: बिल्कुल।
1: उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दें, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो
1: हाँ
0: दूसरों को दे दें। जो
1: बिल्कुल नहीं
0: भोजन आप खा सकते हैं, जो
1: जी
0: खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि
1: जी
0: जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं
1: नहीं
0: करना
1: करना
0: है।
1: है
0: चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल जी
0: साथी ने हमारे लिख
1: मतलब
0: करके
1: जैसे
0: भेजा
1: कोई
0: है।
1: बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती है ना, वैसी चटकेगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो
1: तो
0: मंजरी,
1: जी
0: अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद
1: उन्हें
0: होता
1: और
0: है।
1: मजा आता है चटकारे लेके,
0: हाँ
1: उसमें किस्से अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते हैं ना मुंह से बात निकली
0: हाँ
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है
0: हाँ जब एक ही बात अगर
1: जी
0: मतलब 5, 6, 10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका
1: आ
0: रहता है।
1: चुका है
0: यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता
1: तो
0: है।
1: बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी, कि अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये
1: तो ही
0: संभव
1: ठीक
0: नहीं
1: है,
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: हो पाता।
0: किसने
1: लेकिन
0: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात यह है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला
1: बिल्कुल
0: जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते
1: जी
0: हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही
1: फिर तो
0: नहीं कर
1: इससे अच्छा है
0: पाएंगे।
1: कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें
0: तो
1: फैलाने दो जिसको फैलाना
0: बिल्कुल
1: है
0: सबसे बड़ी
1: जी।
0: बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं,
1: है ना,
0: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके, अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए, आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो, पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले, उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है, किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता दिखाइए।
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पर बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
2: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
3: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
2: और एक हमारे साथी और देखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका।
3: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जे के तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और

0: रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल,
1: बिल्कुल.
0: और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे
1: बिल्कुल.
0: गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी. और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज. मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि
0: अरे
1: आप गाते भी बहुत अच्छा है
0: हाँ,
1: ये
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छा तो
1: जानती
0: नहीं,
1: हूँ.
0: लेकिन हाँ शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ. शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा, परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ, या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
0: नहीं, चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो, मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी
1: जी.
0: वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पे जॉब मिला, एडी।
1: एडी.
0: तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर, मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे
1: पर
0: दीजिए।
1: फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर पर
0: हाँ
1: बचपन
0: वो
1: से
0: देखा था, तो
1: आते
0: उस
1: जाते
0: वजह
1: हुए.
0: से मतलब मेरा, मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी
1: जी
0: वजह से हूँ।
1: जी जी जी उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें. उस टाइम आप सेट पे जाते थे, या किसी से मुलाकात हुई, या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
0: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी। तो
1: अच्छा.
0: उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने एसएल स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा दूर लगा था। अब और ज़्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह
1: जी.
0: से। तो हम वहाँ पर गए थे, और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ, और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं, और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ, और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है,
1: जी.
0: मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ
1: नहीं,
0: करना
1: आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते
0: थैंक
1: हैं
0: यू, थैंक
1: और
0: यू सो
1: बहुत
0: मच।
1: पसंद किए जाते हैं. और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
0: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया है, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था,
1: जी.
0: तो वहाँ पर मतलब मेरी पूरी कायापलट हुई एकदम। वहाँ काफ़ी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफ़ी शुरू हो गया था
1: जी. अच्छा, थिएटर और ड्रामा
0: थिएटर
1: ये सब.
0: ड्रामा, तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही, मिला ही नहीं ना स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहाँ पर नाटक हुआ नहीं, एक एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे, मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहाँ पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी
1: अच्छा.
0: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं, फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के
1: जी
0: साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया,
1: जी
0: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे
0: हाँ
1: में भी हम बात
0: जी जी
1: करेंगे. फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं.
0: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के, आपकी याद आती रही रात भर अगर
1: अच्छा,
0: गमन से,
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे.
0: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: कि बच्चों के बोलते हैं कि महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैंने महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ, मैंने नहीं मैं गोवा में रहता हूँ
1: नहीं, आप
0: तो
1: बेफिक्र
0: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी,
0: हाँ,
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब हम काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राशि प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे, नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
0: जी
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
0: अच्छा
1: योगदान है। तो
0: जी,
1: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
0: झुकाव,
1: उस तरफ
0: रुझान।
1: बढ़ाया, रुझान। तो वो, उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था,
0: जी
1: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
0: जी

0: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
1: कमाल है।
0: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
1: अच्छा।
0: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में, तो वो शो लिखना था। उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं
1: जी।
0: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी। मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी। और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का
1: जी
0: तमगा लग गया।
1: जी
0: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में, 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
1: जी
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी
1: क्या बात है, क्या
0: थैंक
1: बात है,
0: यू, थैंक यू।
1: बहुत खूब।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए, ओए।

0: गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया
2: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं आपके खाते में शामिल हैं हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ
3: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था चार साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था

0: और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
1: जी
0: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते।
1: जी
0: तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब है
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ, इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
1: जी
0: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर, फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए,
1: अच्छा
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने,
1: बिल्कुल
0: हाँ मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए, और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी,
1: जी
0: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी हैव एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा, मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता
1: और जब तक है जहां उससे भी
0: हूँ।
1: आप रिलेट किए, उससे कैसे
0: हाँ
1: जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले, एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था,
1: जी
0: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया,
1: अच्छा
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
1: जी
0: सीन्स के साथ
1: अच्छा
0: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ, उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
1: जी
0: था
1: जैन
0: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
1: अच्छा
0: वो शानू की असिस्टेंट थी,
1: हाँ।
0: तो वो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें जो मेरे साथ में हो रही थी कि, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: कल्टी
1: मिल गया
0: मौका मिलते ही मतलब
1: आपको
0: मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
1: जी
0: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है, तो मुझे लगा ठीक है अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट, बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या, तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया, तो ऑफिस पहुँचा ही था मैं कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
1: अच्छा
0: दिन बाद
1: उसी
0: या
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ सेम रोल का ही
1: अच्छा
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया,
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
1: हाँ
0: था,
1: वो कुछ
0: और
1: अलग
0: मैं
1: क्लिक
0: उस
1: कर
0: वक्त एकदम
1: गया
0: ऐसा था 90 किलो का।

0: हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग-अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है? बार
1: अलग
0: बार
1: अलग
0: राउंड्स देने
1: प्रोजेक्ट पे,
0: पड़ते हैं?
1: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
0: अच्छा।
1: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
0: बिल्कुल
1: का।
0: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
1: बहुत
0: कहीं,
1: सारे,
0: बहुत
1: हाँ
0: सारे। तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
1: वो
0: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर अब वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफी पॉजिटिव रहा हूँ, और मेरे आसपास भी काफी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
0: बिल्कुल।
1: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही, और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब
0: हम सब
1: इसमें
0: साथ
1: तुम्हारे
0: में
1: साथ
0: हैं।
1: में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस
0: बिल्कुल।
1: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो
0: वो जो
1: जाएगा।
0: कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
1: जी
0: में, तो
1: हाँ
0: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: कि
1: उसके
0: मेरा
1: डायलॉग मैंने
0: जन्म ही,
1: लिखे हैं फिल्म
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि
1: में।
0: मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए
1: यस
0: हुआ है।
1: यस,
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
1: फिल्मिस्तान
0: थोड़ा सा।
1: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहां पे 3-4 महीने जो मैंने वहां पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था, और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ही जान में सेलेक्ट हुआ, उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है। और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई, और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
0: फिल्मिस्तान।
1: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल। कहते हैं ना, जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
1: वो
0: जाता
1: मिल
0: है।
1: जाता है, तो वही
0: ऐसा ही
1: हुआ मेरे
0: कुछ हुआ।
1: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत?
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है,
0: भी आपने लिखे हैं?
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा, तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: उन्हें
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा,
1: था
0: बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस ये ही मेरी ये।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया।
1: लेवल ही अलग है हमारी, हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चाली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहाँ पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था यार ये तो कमाल होगा, और फिर हमने धीरे धीरे नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ, फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुज्जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है
0: मैं प्रोड्यूसर
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
0: हूं
1: सिंह चार्ली का हूँ, जो
0: जी।
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहां से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं मैं,
0: जी,
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे
1: अंदर।
0: काफी रिलेट कर पाते
1: हाँ
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं, और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनियर हो रहा, या तरला का नलिन दलाल, या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो
0: हाँ,
1: किया है,
0: मेहरूनी की बात करते हैं. हाँ
1: हाँ,
0: हाँ बिल्कुल.
1: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
0: जी जी जी जी
1: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या
0: और
1: कहेंगे
0: दर्शकों
1: उसको,
0: से भी वो कहीं ना कहीं
1: इमेज
0: जुड़ाव
1: तो
0: आ
1: है।
0: जाता है.
1: हाँ
0: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
1: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
0: हाँ.
1: काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
0: बिल्कुल,
1: इतना यकीन, वो
0: वो
1: मुझे
0: सुनवा देते हैं, वो गीत
1: प्लीज।
0: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को.

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या ख़त्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी.
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो

0: अच्छा, अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब
1: बिल्कुल.
0: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया, और उसके बाद लेकिन फोन आया और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे। नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है.
0: कंफर्टेबल हैं? तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं इसको। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे।
1: जी.
0: फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव आने
1: होगा
0: वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।
1: जी.
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीज़न 1, और वो OTT पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की, मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे,
1: बिल्कुल.
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे, और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोवर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीज़न 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए, मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया।
1: बिल्कुल.
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया,
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया। लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई, और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल.
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा, और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है। लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ वो
1: हाँ.
0: कभी कट नहीं करते हैं, जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको, मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक, मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, और उसमें से कुछ जमती हैं कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा
1: बिल्कुल.
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की।
1: बिल्कुल.
0: राजेंद्री के बहुत हमें, मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं, मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में, मैं मतलब एकदम, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं, और मैं जेके बनूंगा और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है। तो अब मैं सीज़न 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत
0: हूँ
1: बेसब्री से इंतजार है हमें.
0: थैंक यू
1: अच्छा, इन सीरीज में जहां पे एक्शन सीरीज होती है, तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं
1: स्टंट्स आप
0: वर्कशॉप
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
1: उठा
0: हैं, और वो
1: लेते
0: कोई बोलता भी नहीं है कि
1: जी.
0: आप करो, अगर
1: हाँ
0: डिफिकल्ट
1: हाँ
0: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं। और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज्ड टू हो जाते
0: यूज
1: हैं.
0: टू हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो, मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहाँ से ज़मीन पे गिरा, लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं।

0: हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे
1: और
0: तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से।
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल।
0: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ। तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया, सैफ अली खान साहब के साथ। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोर दा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को, या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं, उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं, या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना, वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं, वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
0: कभी
1: गेम में हैं
0: मौके
1: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको,
0: कमाल हो जाएगा।
1: बहुत हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
0: जुड़ना
1: चाहूँगा,
0: चाहेंगे।
1: जुड़ना चाहूँगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जिसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ, और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको।
1: फिल्में बहुत पसंद है,
0: जी
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ,
1: जी
0: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर
1: थैंक
0: सारी,
1: यू थैंक
0: और आप
1: यू
0: बार बार आएं और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में। जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं
0: जी
1: वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
0: जी
1: आएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉयड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये
3: अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। FM एंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 5 बजने को है। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में, जहां बातें होती है युवाओं की, युवाओं के सोच की और उनको आगे बढ़ाने के जुनून को देने का हम काम करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा नारायण सोनी और हाजिर हूं लेकर आज का कार्यक्रम। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, बात करते हैं विश्व हृदय दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और हृदय रोगों से बचाव के उपाय बताना भी है। आज युवाओं में भी हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके प्रमुख कारण असंतुलित खान पान, अधिक जंक फूड, तनाव, नींद की कमी, धूम्रपान, शराब, शारीरिक गतिविधि की कमी और लंबे समय तक मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल है। कम उम्र में बढ़ता मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल भी जोखिम बढ़ाता ही है साथियों। इन समस्याओं से बचने के लिए युवाओं को नियमित व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और संतुलित भोजन लेना चाहिए तथा नमक, चीनी और अत्यधिक तले भोजन को सीमित करना चाहिए। पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण और नशे से दूरी भी जरूरी है साथियों। समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए और स्वस्थ हृदय की स्वस्थ और सक्रिय जीवन की मजबूत नींव है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है मंगलवार और हमारा आज का खास कार्यक्रम फोन करें गीत सुने हैं, तो आज सभी को सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गीत। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जानते हैं ये जानकारी।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दीदी, नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
4: पर दी,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: दोस्तों, सबसे पहली फरमा

0: नुमाइश की है छगन लाल भाकल ने नागौर से। तो आइए सुनते हैं भ्रष्टाचार मूवी का ये गीत।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

दोस्तों, आप सभी के पसंदीदा गीत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय के अभाव के कारण हम नहीं बजा सकते, लेकिन आप सभी का नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगी। तो सुमन नया दरवाज़ा नागौर से, और राम निवास सांगवा जाट कॉलोनी से, नियाज पेंटर लोहारपुरा से, मामराज जोरडा नागौर से, और कुंभा राम चावला नागौर से, आप सभी ने हमारे यहाँ पे फ़ोन किए, लेकिन आपके गाने हम नहीं बजा पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली कार्यक्रम में ज़रूर आपके गीत शामिल करें हम। और इसी कार्यक्रम को लेकर मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई रखें। नमस्कार।

युवा साथी भी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। सखियों, आज की बात में हम शामिल करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। सखियों, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो हृदय रोगों और उनके जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सखियों, वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 1999 में की गई थी। पहला आयोजन 24 सितंबर 2000 को हुआ था और महत्व की बात करें तो हृदय की सेहत को स्वस्थ रखने, संतुलित आहार लेने और समय पर लक्षणों की पहचान कर जांच कराने के लिए प्रेरित करना इसका महत्व किया जाता है। साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी ज़रूरी बातें भी हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाएं जिससे आपका हार्ट जो है स्वस्थ है कि नहीं इसका आप पता लगा पाएं। साथ ही धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से दूर रहें, रोजाना शारीरिक श्रम या फिर आप एक्सरसाइज करें, कम नमक खाएं और संतुलित भोजन का सेवन करें। साथ ही हृदय संबंधी बीमारी में चाहे इसका कारण कुछ भी हो लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। हृदय संबंधी बीमारी चाहे इसका कारण गतिहीन जीवन शैली, खराब खान पान या फिर बढ़ता तनाव हो सकता है। सच्चाई यही है कि हृदय रोग दुनिया की लगभग सभी हिस्सों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। सखियों, हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: सखियों, ब्रेक के बाद फिर से प्रोग्राम में स्वागत है। सखियों, हम बात कर रहे थे हार्ट के बारे में, हमारे हृदय के बारे में, जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। सच्चाई यही है कि हृदय रोग दुनिया की लगभग सभी हिस्सों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। हालांकि जागरूकता, नियमित जाँच और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से कई जो है हार्ट संबंधी बीमारियों को रोका जा सकता है या फिर बेहतर ढंग से उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यही कारण है कि विश्व हृदय जो दिवस है इसकी स्थापना की गई ताकि लोगों को हृदय रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचानने और साथ ही जोखिमों को और उनके कारकों को समझने और बेहतर हृदय स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये गीत।

0: सकियो, हमने अभी एक प्यारा सा गाना सुना था। हमने लिया था हम है राही प्यार फिल्म से, आवाज़ें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार की एक आर्थिक सहायता योजना है। सखियो योजना के मुख्य लाभ के बारे में हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: सखियो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। योजना के मुख्य लाभ, पहला बच्चा, पहले बच्चे के जन्म पर कुल 5,000 की राशि सीधे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस खाते में दी जाती है। ये राशि 2 किस्तों में मिलती है। गर्भावस्था की जांच के बाद 3,000 और बच्चे के जन्म व टीकाकरण के बाद शेष बची हुई राशि। सखियो, दूसरा बच्चा, लड़की होने पर, दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6,000 की सहायता एक ही किश्त में दी जाती है। सखियो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पात्रता की बात करें तो सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जो महिलाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या किसी अन्य कानून के तहत सामान लाभ पा रही हैं, वह इसकी पात्र नहीं है। तो सखियो, जरूर इस योजना का लाभ उठाएं। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी हमने शेषनाग मूवी का ये गाना सुना था। आवाजी थी अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडेकर की। सखियों, स्वास्थ्य टिप्स की बात करें तो डिप्रेशन से किससे डील करें। आजकल देखने में आ रहा है कि डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है युवाओं में भी। डिप्रेशन से निपटने के लिए आप जो है डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं और अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव करके भी डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। सखियों, डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक कंडीशन होती है, लेकिन सही देखभाल से इससे बाहर निकला जा सकता है, ठीक भी हो सकते हैं। इससे डील करने के लिए असरदार तरीके भी आप अपना सकती हैं जिससे आसानी से आप ठीक हो जाएं। डॉक्टर या फिर काउंसलर से मिले, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक या फिर मनोचिकित्सक से भी बात करना है तो आप कर सकते हो। ये कमज़ोरी नहीं है, समझदारी है। या फिर आप थेरेपी या फिर दवाइयों का सहारा ले सकते हो। थेरेपी और दवाइयाँ ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर कॉग्निटिव बिहेवियरल जो आपका बिहेवियर है, थेरेपी या फिर दवाइयों की सलाह दे सकते हैं जो मूड को बेहतर बनाता। आपका मूड किस तरह से है उसको बेहतर करता है, जिससे डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। सखियों, कुछ ऐसे टिप्स भी अपना सकते हैं जैसे जो दैनिक जीवन शैली है उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उससे भी आपका मूड ठीक हो जाता है और डिप्रेशन से धीरे धीरे आप बाहर आ जाते। हालांकि इसमें टाइम लगता है। एक छोटी दिनचर्या बनाएं, हर दिन एक तय समय पर सोने और जागने की आदत डालें, ये भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। साथ ही शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं, रोज़ 30 मिनट टहलें या फिर हल्का एक्सरसाइज करें, इससे शरीर में खुशी के हार्मोन जो एंडोफ्रिन होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जैसे ही आपकी बॉडी को खुशी मिलेगी आप डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे। साथ ही स्वस्थ खान पान रखें, संतुलित और पौष्टिक भोजन लें, शराब सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहें क्योंकि ये डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। साथ ही मानसिक और भावनात्मक देखभाल की भी डिप्रेशन में ज़रूरत होती है। साथ ही आप अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें जहाँ अच्छी बातें हों, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें जिससे आप में आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आए, जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आए। साथ ही छोटे लक्ष्य रखें, कुछ ऐसे छोटे टिप्स भी अपना सकते हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल दें। साथ ही योग और ध्यान में भी अपना ध्यान लगाएं ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकें। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की डेल्टाएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया सरगम फिल्म से। गीत आनंद बख्शी का है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर का गाया, वर्मा मलिक का लिखा और लक्ष्मी प्यारे का संगीतवती गीत हमने लिया है जानी दुश्मन फिल्म से।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू का गाया ये गीत। गीत समीर का है और धुन बनाई है अन्नू मलिक ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे बिरधीलाल वर्मा की गायी कुछ लोक प्रस्तुतियां।

माटी के स्वर के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बिरजीलाल वर्मा की गाई कुछ लोक प्रस्तुतियां। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इन्हीं के स्वर में।

बिरदीलाल वर्मा की गायी कुछ लोक प्रस्तुतियां अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जनता विकास की पक्षधर और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का भरोसा दिलाया। विश्व हृदय दिवस पर दिल की बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम पर जोर। और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 48 पदक अपने नाम किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने निकाय चुनावों की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन का जो हमारा संकल्प था, एक चरण हमारा निकाय चुनाव का पूरा हुआ है, दूसरा तुरंत हमारा पंचायत चुनाव का चरण है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से, आप सबने देखा है कि 2.5 साल में लगातार हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से आरोप लगाती है, जब वो हारने लगती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। प्रमाण कोई नहीं, लेकिन उसका काम आरोप लगाना है।
0: श्री शर्मा इसके बाद झालावाड़ पहुंचकर संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद उनका किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है। श्री शर्मा कल बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। उनका बाछड़ाऊ गांव में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। राज्य सरकार ने राजकीय कार्मिकों और 70 वर्ष की आयु के पात्र पेंशनर्स तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट CSAP लागू किया है। इसके जरिए लाभार्थियों को एकीकृत और सुगम बैंकिंग सेवाओं के साथ वित्तीय तथा बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी। वित्त विभाग के शासन सचिव हरीश लड्ढा ने बताया कि इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि CSAP के तहत बेहतर बैंकिंग सुविधाओं से युक्त जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट पर उपलब्ध होगा। इस पर ऑनलाइन राशि हस्तांतरण की सुविधा निशुल्क रहेगी। साथ ही आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए रियायती ऋण सुविधाएं भी मिलेंगी। पैकेज में लाभार्थियों के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्नत सुविधाओं वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। छठे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिसंबर में होने वाले CS सम्मेलन के लिए राज्य स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में नीति आयोग की ओर से प्रस्तावित राजस्थान के 5 प्राथमिक क्षेत्रों अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, जलवायु अनुकूल कृषि, औद्योगिक विकास तथा उद्यानिकी आधारित कृषि विकास पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सम्मेलन की रूपरेखा की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करेगी। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भुगतान 48 घंटे के भीतर हो जाए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 के दूसरे दिन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। इसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से गोदामों की व्यवस्था और मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले नए बाजार का लाभ उठाकर देश के कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों और अनाज को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। श्री चौहान ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसान। ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार, एक बार खरीदी लंबे समय तक चलती, अब लंबे समय में फिर कई तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं होती है, इसलिए खरीदी की आप पूरी व्यवस्था जिसमें किसान का आए, समय पर किसान को पैसा मिल जाए, पहले से व्यवस्था हम करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आज 4 साल बाद चुनाव हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करके आदेश जारी करने को कहा है। चुनाव अधिकारी एके पांडे ने बताया कि आरसीए के अध्यक्ष के लिए धनंजय सिंह और ब्रजकिशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है। वहीं सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 6 पदों पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। आरसीए प्रशासक भास्कर ए सावंत ने बताया कि मतदान से पहले आरसीए की एजीएम हुई।
3: आज एजीएम कंडक्ट करके इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इलेक्शन प्रक्रिया हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी हम इलेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं।
0: राजसमंद में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 दलालों को 25-25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी हिम्मत सिंह ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। परिवादी को सीजीएसटी की ओर से दिए गए नोटिस से जुड़े मामले को निपटाने के एवज में ये राशि मांगी गई थी। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है डोंट मिस अ बीट। इसका अर्थ है दिल की बीमारी के छुपे हुए या हल्के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह विषय लोगों को दिल की बीमारी के लक्षणों को पहचानने, जोखिम को नियंत्रित करने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने में याद दिलाता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और व्यायाम हृदय की सेहत के लिए जरूरी है। साथ ही समय समय पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवानी चाहिए।
4: अगर आपको थोड़ा सा भी हृदय संबंधी समस्या का लग रहा है तो अपने चिकित्सक की सलाह लें और डायग्नोसिस करें, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ईसीजी, फिर आता है 2D इको एंड देन एंजियोग्राफी और अदर इन्वेस्टिगेशंस। एज ए योग प्रशिक्षक और हृदय रोग विशेषज्ञ की भांति मैं आप सबको कहूंगा, डोंट मिस योर मेडिटेशन। अपना ध्यान कभी मिस न करें, योगासन प्राणायाम कभी मिस न करें और यकीन जानिए कि आपका हृदय रहेगा स्वस्थ। स्ट्रेस फ्री रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें।
0: प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न रैली, जागरूकता सभा सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि अभियान के तहत 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तनाव, चिंता या किसी परेशानी के समय परिवार और दोस्तों से बात करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान से जुड़ने और आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की है। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का लक्ष्य स्पष्ट किया है कि संकट आने से पहले ही तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और संचालन तैयारियों को प्रदर्शित किया है।
5: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जापान में आयोजित एशियाई खेल 2026 में भारत ने 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 48 पदक हासिल कर लिए हैं। आज 11वें दिन भारत ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप शूटिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीड़ ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक की भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जनता विकास की पक्षधर और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का भरोसा दिलाया। विश्व हृदय दिवस पर दिल की बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम पर जोर। और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 48 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं विशारद जोशी। पाली जिले में पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां हुई, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई, वहीं विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविर लगाए गए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रधान पदों के वर्गवार और महिला आरक्षण की लॉटरी जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पिछले दिनों जिला परिषद सभागार में निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से विभिन्न पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों की जांच, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को हुए। 14 सितंबर को मतगणना हुई। पार्षदों के चुनाव के बाद जिले की नगर निगम सहित 9 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और परिणाम घोषित हुए। नगर निगम की महापौर सहित जिले की 9 नगर पालिकाओं में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। नगर निगम पाली से नमिता बोबकिया, सोजत सिटी से कीर्ति, सोजत रोड से भावना धंजा, मारवाड़ जंक्शन से देवाराम, सादड़ी से संजय कुमार बोहरा, बाली से देवीबाई, खुड़ाला फालना से उमा कंवर, सुमेरपुर से चतुर्भुज शर्मा और तखतगढ़ से जयश्री विजयी रहे। वहीं रानी में दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को 10-10 वोट मिलने पर लॉटरी के माध्यम से भाजपा के बाबूलाल अध्यक्ष पद पर चुने गए। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां भी जिले में पिछले दिनों संपन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। न्यायालय ने नदी के किनारे 100 मीटर तक नए निर्माण और विकास कार्यों पर रोक लगाई है। नदी के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी रोक लगाई गई है।
6: वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने जवाई क्षेत्र में तेंदुए की आवास गुफाओं प्रजनन स्थलों और वन्यजीव कॉरिडोर के आसपास नए व्यवसायिक निर्माण पर रोक लगा दी है। तेंदुए के आवास के आसपास एक किलोमीटर क्षेत्र को निर्माण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। पहाड़ियों में खनन और नई पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। वन विभाग को 8 सप्ताह में तेंदुआ आवास की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें रक्तदान शिविर, मेरे सपनों का भारत, चित्रकला, सेवा की कहानी, सेवा ज्योति कलश यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु, सेवा के रंग, राष्ट्र के संग और सुशासन सेवा संवाद सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 19 से 25 सितंबर तक पंचायत समिति स्तर पर सेवा शिविर लगाए गए। इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम जन की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं 25 से 27 सितंबर तक आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली, चित्रकला, कहानी और कविता पाठ के आयोजन हुए। स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के तहत स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर मंडल की ओर से मावली और मारवाड़ जंक्शन सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों और विद्यालयों में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर में 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस पर पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यार्थियों के लिए काव्य पाठ, निबंध लेखन, कविता लेखन, नारा लेखन, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग, आशुभाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना रहा। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्राएं निकाली गईं, मंदिरों, मोहल्लों और घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं। सिद्ध पीठ गणेश मंदिर में मेला भरा। अनंत चतुर्दशी पर शोभा यात्राओं के बाद सिरे घाट पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस वर्ष मॉनसून के दौरान कम बारिश होने से जिले में पेयजल स्रोतों के रूप में उपयोग किए जा रहे बांधों में पानी की उपलब्धता कम है। आगामी समय में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो जनता विकास री हिमायती और सरकार जनता री उम्मीदां पूरी करनो तय कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्र किसानों तुअर उड़द और मसूर री पूरी साख सरकारी मोल माथे खरीदन रो भरोसो दिलायो। विश्व हृदय दिवस रे मौके दिल री बीमारियां री रोकथाम सारू संतुलित खान पीन और कसरत माथे जोर दियो चियो। और जापान माय चाल रहा एशियाई खेलना माय निशानेबाज नीरू ढांडा सोनारा तमगा माथे निशानो लगायो। भारत हाल ताई 48 पदक जीतिया। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज कोटा माए भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं सागे बातचीत कीनी। वे लारला दिनाभ्या स्थानीय निकाय चुनाव माए जीत ने कार्यकर्ताओं री मेहनत और जनता सागे जुड़ाव री जीत बताई। मुख्यमंत्री कहो कि प्रदेश री जनता विकास री मर्जी रखे है और सरकार जनता री उम्मीदा पूरी करनो तय कीनो है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री शर्मा संवैधानिक संस्थावां रा बेजा इस्तेमाल रा कांग्रेस पार्टी रा आरोपां ने खारिज करती ना।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन का जो हमारा संकल्प था, एक चरण हमारा निकाय चुनाव का पूरा हुआ है, दूसरा तुरंत हमारा पंचायत चुनाव का चरण है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से, आप सबने देखा है कि 2.5 साल में लगातार हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से आरोप लगाती है, जब वो हारने लगती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। प्रमाण कोई नहीं, लेकिन उसका काम आरोप लगाना है।
7: ઈ પાછે મુખ્યમંત્રી કિશનગઢ પધાર્યા, જેઠે મારો ભાજપારા કાર્યકર્તામાં સાગે વાતચીત રો કાર્યક્રમ હૈ. શ્રી શર્મારો કાલ બાડમેર રા દૌરા રો કાર્યક્રમ હૈ. વે બાછડાઉ ગાંવમાં જનસભાને સંબોધિત કરેલા. રાજ્ય સરકાર સરકારી કર્મચારીઓ અર 70 સાલ તાઈની ઉંમરરા પેન્શન લેવણવાળા પાત્ર લોગા અર સરકારી ઉપક્રમારા કર્મચારીઓ સારું કમ્પોઝિટ સેલરી એકાઉન્ટ પેકેજ CSAP લાગુ કિનો હૈ. इनके जरिए एकीकृत और आसान बैंकिंग सुविधा सागे माली और बीमा हिफाजत मिलेला. वित्त विभाग रा शासन सचिव हरीश लड्ढा बतायो कई सारू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक समेत 12 सरकारी बैंक ने शामिल करी चिया है. वे बतायो कि CSAP रा तहत जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट रो सुविधा ही मिलेला, जहां थे ऑनलाइन रकम रा लेन देन मुफ्त करिया जा सकेला. इस आगे रहवास, बनाई लिखाई, वाहन और खुदरी जरूरत सारू रियायती रेट माथे कर्ज रासो बिताई मिलेला. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्र किसानारी तुअर, उड़द और मसूर री पूरी साख सरकार कानियो सरकारी मूल माथे खरीदी रो भरोसो दिरायो है. वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 रा दूजा दिन रा सत्र में बोल रहा है. श्री चौहान कहो कि साखानी बिक्री पाछे 48 घंटा में चुकारो करनो तय करियो जावेला. केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि सरकार किसानों ने साखा रो फायदेमंद मूल दिरावण री रणनीति बना रही है. श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौताओं खुलन वाला नुआ बाजार रो फायदो उठार देश रा खेतीबाड़ी में जुड़िया उत्पादा फलां, तरकारियां और अनाज री दुनिया भर में बिक्री रो भरोसो दिरायो.
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसान. ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार. एक बार खरीदी लंबे समय तक चलती, अब लंबे समय में फिर कई तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं होती है. इसलिए खरीदी की आप पूरी व्यवस्था जिसमें किसान का आए, समय पर किसान को पैसा मिल जाए, पहले से व्यवस्था हम करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए.
7: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो. प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा 4 साल पाछे आज चुनाव हुआ. हालांकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव रा नतीजा माथे रोक लगाती नी. सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट नू ई मामला री बेगी सुनवाई कर और जरूरी हुकम देवन बाबत कहो. RCA रा अध्यक्ष ओहदा सारू धनंजय सिंह और ब्रिज किशोर उपाध्याय बीच मुकाबलो है. इस आगे सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 6 ओहदा माथे 11 उम्मीदवार चुनाव लड़िया है. RCA रा प्रशासक भास्कर ए सावंत बतायो कि वोट देवण पहली RCA री सालाना मीटिंग भी
3: आज AGM कंडक्ट करके इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है. इलेक्शन प्रक्रिया हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार के वकील है उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी हम इलेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं.
7: राजसमंद में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम 2 दलाला ने 25-25 लाख रुपए की घूस लेता रंग्या हाथा पकड़ लीना. ACB रा ASP हिम्मत सिंह बतायो कि एक जना ने CGST री ओरों दिया जा नोटिस जुड़िया मामला रा निपटारा री एवज में आ रकम मांगन रो आरोप है. आज विश्व हृदय दिवस है. दिल री बीमारियां री रोकथाम एरवारा असर रे बारा माय जाग चकावन सारू हर साल 29 सितंबर ने ओ दिन मनायो जावे है. इनरो ई साल रो मुद्दो डोंट मिस अ बीट, दिल की बीमारी के छुपे हुए या हल्के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना राखी चियो है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि ओ दिन दिल री बीमारी रा लक्षणा रीठा करण, जोखिम न काबू करण और टेम सर इलाज करावण री याद दिरावे है. जयपुर रा एसएमएस अस्पताल माए दिलरी बीमारियां रा डॉक्टर मोहित शर्मा आकाशवाणी सागे बातचीत रे दौरान बतायो के संतुलित खान पान जरूरी नींद और कसरत दिलरी सेहत सारू जरूरी है।
4: अगर आपको थोड़ा सा भी हृदय संबंधी समस्या का लग रहा है तो अपने चिकित्सक की सलाह लें और डायग्नोसिस करें, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ईसीजी, फिर आता है 2D इको एंड देन एंजियोग्राफी और अदर इन्वेस्टिगेशंस। एज ए योग प्रशिक्षक और हृदय रोग विशेषज्ञ की भांति मैं आप सबको कहूंगा, डोंट मिस योर मेडिटेशन, अपना ध्यान कभी मिस न करें, योगासन प्राणायाम कभी मिस न करें, और यकीन जानिए कि आपका हृदय रहेगा स्वस्थ। स्ट्रेस फ्री रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें।
7: प्रदेश माए मानसिक स्वास्थ्य रा प्रति जनता माए जाग जगावण सारू 10 सितंबर उ 10 अक्टूबर ताई मानसिक स्वास्थ्य महीनो मनायो जा रियो है। इन अतेत रैलियां और सभा समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो के अभियान रा तेत 10 अक्टूबर ने मानसिक स्वास्थ्य शपथ दिराई जावेला। वे बतायो के तनाव, चिंता या किणी परेशानी री वगत परिवार और दोस्तां सागे बातचीत करनो और जरूरत पड़िया जानकारां री मदद लेनो जरूरी है। वे जनताओं मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान नु जुड़वा और आरएसआर रा लोगां माए जाग जगावण री अरज कीनी। नौसेना रा कमांडरां रो ई साल रो दूजो सम्मेलन आज नई दिल्ली माए शुरू भयो। 3 दिन रा इन सम्मेलन माए नौसेना रा आला अहलकार और दूजा कमांडर शिरकत कर रिया है। रक्षा मंत्रालय रा मुजब सम्मेलन माए फौजी और रणनीतिक लेवल माथे नौसेना री तैयारियां रो जायजो लियो जा रियो है। सम्मेलन माए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो के संकट आवणो पहली मजबूत तैयारी सागे मानो सामो करण सारू तैयार रहनो चाहिए। रक्षा मंत्री कहो के ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा माए देश री ऊर्जा पूर्ति लाइना री हिफाजत और देश रा भला सारू नौ सेना रा पेशेवर बूता और संचालन तैयारियां रो दर्शाव करी चियो है।
5: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
7: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि मीडिया और पत्रकारिता जनता रा नजरिया ने रूप देवन और जाग जगावन माए खास काम करे है। वे आज मुंबई माए फिक्की फ्रेम्स रा उद्घाटन जलसा माए बोल रिया है। श्री शेखावत कहो कि तेजियों बदल रही दुनिया माए उत्तरदायी और प्रामाणिक सामग्री तैयार करनी जरूरी है।
8: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
7: अरब खबर एशियाई खेलों। जापान में चल रहा एशियाई खेला में भारत हाल ताई सोना रा 5, चांदी रा 21 और कांसा रा 22 तमगा समेत 48 पदक जीत लेना है। खेलाना 11वां दिन आज भारत री निशानेबाज नीरू ढांडा महिला ट्रैप शूटिंग होड़ माए सोना रो तमगो जीत्यो। इनु पहले आज ही महिला ट्रैप टीम होड़ माई नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर री जोड़ी चांदी रो तमगो जीत्यो। मुक्केबाजी रा 90 किलोग्राम ओ 32 वजन वर्ग माए नरेंद्र बरवाल कांसा रो तमगो जीत्यो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, जनता विकास री हिमायती और सरकार जनता री उम्मीदां पूरी करनो तय कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पात्र किसानों तुअर, उड़द और मसूर री पूरी साख सरकारी मूल माथे खरीदी करण रो भरोसो दिरायो। विश्व हृदय दिवस रे मौके दिल री बीमारियां री रोकथाम सारू संतुलित खान पीन और कसरत माथे जोर दियो चियो और जापान माए चाल रहा एशियाई खेला माए निशानेबाज नीरू ढांडा सोनारा तमगा माथे निशानों लगायो भारत हाल ताई 48 पदक जीतिया ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो नमस्कार
9: FM 103.7 मेघाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम किसानवाणी हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में ना आया, बै टूटी झोपड़ी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए अपना किसान। किसान वाणी सुनबाला सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाई ली बुआ सब ने ढोगर जैसा। अश्विनी भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: चंचल था ने भी घनो घनो राम राम।
6: और देखो आज ना 29 सितंबर ने पूरी दुनिया में एक अनूठो दिवस मनायो जावे है, जिन्हें कहवे है विश्व हृदय दिवस।
7: बिल्कुल,
6: दिल की जो सेहत होवे है ई के प्रति लोगों ने जागरूक करवा की खातिर और लोगों ने ई को महत्व समझावा की खातिर यो दिन मनायो जावे है। वर्ष 2000 सु यो दिन मनायो जा रहे है, और कोई भी दिवस यदि महत्वपूर्ण है या भी क्यों मनावो सार्थक है जब आपा भी जागरूक हो जावा।
7: बिल्कुल, और आपना हृदय ना आपा कई तरीका से रख सका चाह भी के बारे में बताया गया, तो आपने भी कमाने खान पान हुई हो, रहन सहन हुई हो, और आपनों व्यायाम भी विषय बहुत ही जुड़ेड़ो से।
6: बिल्कुल, तो यह बात तो हुई कि आज को जो एक अनोखो दिवस पूरी दुनिया मना रही है आपा भी मना रहा है, और आपा अपनी सेहत के प्रति हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सावचेती रखा। और अब सावचेती यही है कि आप जानकारियां की तरफ चला, तो अब मैं चाहूं हूं कि आप जानकारियां दिलाओ और मैं बैठर सुनूं।
7: बिल्कुल किसान भाइयों, आज हमारे बीच जानकारी देने के लिए पधारे हैं तेज प्रताप सिंह जी, जो है विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र चुमू टांकड़ा, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती का महत्व एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करें, राम राम साहब।
8: राम राम साहब किसान बंधुओं।
7: तेज प्रताप जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है।
8: बहुत अच्छा है आपने प्रश्न किया। वैसे तो हमारे किसान बंधु अधिकतर प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं, और वैसे भारत सरकार हमारा 2 साल प्राकृतिक खेती नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के रूप में ये पूरा प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है
7: जी।
8: तो अधिकतर किसान इसको कर भी रहे हैं प्राकृतिक खेती के को अपने खेत पर, और अधिकतर किसान

0: तक प्राकृतिक खेती के बारे में पहुंच चुका है कि प्राकृतिक खेती क्या होता है, लेकिन फिर भी अपने किसान को जानना चाहिए कि प्राकृतिक खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फसलों की वृद्धि तथा उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से तैयार खाद तथा किसान के पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके खेत पर, किसान के खेत पर जो संसाधन उपलब्ध है वही उसी संसाधन का प्रयोग करके फसल पोषण और किसान को जो है ना तैयार करना है। कृषि में उपयोग होने वाले कोई भी संसाधन बाजार से नहीं खरीदना है। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जा सकता है जो प्राकृतिक आदानों पर आधारित है। यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के अधिकतम प्रयोग को सुविधा मिलती है।
1: बिल्कुल सर, प्राकृतिक खेती के स्तंभ कौन कौन से होते हैं जिन पर संपूर्ण फसलोत्पादन आधारित होता है?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ होते हैं जिसपे पूरी प्राकृतिक खेती आधारित है। फसल बिजाई से लेकर के और फसल कटने तक ये 5 स्तंभों का जो प्राकृतिक खेती के जिसको हम पिलर कहते हैं
1: जी।
0: जिस तरह से पहला पिलर है आपका जो है ना बीजामृत, दूसरा पिलर है आपका जो है ना जीवामृत, तीसरा पिलर है आपका निमास्त्र, चौथा पिलर है आपका आच्छादन, पांचवा पिलर है आपका वापसा। तो ये 5 स्तंभों का प्रयोग करके हम अपनी जो है ना फसल को और अपनी मिट्टी को अच्छा जो है ना बना सकते हैं, फसल का उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं
1: जी।
0: और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बना के रख सकते हैं।
1: बिल्कुल तेज प्रताप जी, अभी आपने बताया प्राकृतिक खेती का एक स्तंभ जीवामृत जिसकी बात कर रहे हैं, किसान भाई इसको कैसे तैयार कर सकते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए?
0: ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्य किसान को भी जो यदि प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा है उसको भी ये जो है ना विषय जानने का अधिकार है
1: जी।
0: जिस तरह से आप कुछ मत कीजिए किसान बंधु, यदि आप किसानी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके घर पे जो है ना जानवर है। लेकिन एक बात अपने जेहन में बैठा लीजिए किसान बंधु कि यदि आप प्राकृतिक खेती के बारे में सोच रहे हैं
1: जी।
0: तो इसका मतलब कि जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, जिस तरह से देसी गाय जिसको अब यदि हम सामान्य भाषा में कहें, तो प्राकृतिक खेती तभी आपके खेत पर जो है ना सक्सेस होगा, सफल हो पाएगा जब आप जो है ना एक देसी गाय रखेंगे
1: जी।
0: और देसी गाय तो अपनी संस्कृति में भी जो है ना शुभ माना गया है। को यदि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो आपको जो है ना देसी गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, देसी गाय के गोमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी
1: जी।
0: तो ये इस वजह से आपको देसी गाय अपने घर पे रखना बहुत जो है ना जरूरी है। आपको करना क्या है, जिस तरह से जीवामृत, आप शब्द से ही पकड़िए किसान बंधु कि जीवामृत मतलब जीवों का एक जो है ना अमृत, जीवों का एक जो है ना बहुत बड़ा जो है ना अंबार, ढेर जिसमें जो है ना अपनी धरती को हमने जो है ना अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक डाल डाल करके जो हमारे जमीन के जीव हैं, जो हमारे लिए, जो हमारी फसल के लिए और जो हमारे जमीन के अंदर जो पोषण उपलब्ध है उसको एक वाहक का काम करते हैं, ये उन जीवों को हमने अपने धरती से, अपने जमीन से समाप्त कर दिया। तो इस वजह से जीवामृत आपको बनाना जो है ना सीखना है। अब जीवामृत में क्या करना है, आपको एक जो है ना ड्रम लेना है, 200 लीटर का आप ड्रम लीजिए, उसमें क्या कीजिए कि आप 180 लीटर जो है ना पानी लीजिए, फिर उसमें आप जो है ना 10 लीटर जो है ना गोमूत्र डाल दीजिए, आप जो है ना 10 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर डाल दीजिए, 2 किलो जो है ना बेसन डाल दीजिए, आधा से 1 किलो बरगद या पीपल या खेजड़ी के नीचे की जो है ना 6 इंच ऊपर की मिट्टी आप जो है ना डाल दीजिए और 2 किलो आप जो है ना गुड़ डाल दीजिए। ये जो मैं सामग्री बताया हूँ किसान बंधु, इसको एक साथ ड्रम में डाल करके और इस ड्रम को जो है ना छाये में रखी, किसी जो है ना पेड़ के नीचे रखिए या जहां पे जो है ना सूर्य की सीधा रोशनी नहीं आ रही हो वहां पे आपको रखना है। और इसको क्या कीजिए कि आप जो है ना ड्रम को किसी डंडे के सहारे से आप इसको 3 दिन तक सुबह और

0: ड्रिप के माध्यम से अपने जो है ना खेत में बहा दीजिए। आपका फवारा है, मिनी फवारा है या फवारा है, तो आप इसको छान करके और आप जो है ना आप वेंचुरी के माध्यम से आप इसको जो है ना फवारा चला दीजिए। तो इसको क्या करना है कि 200 लीटर आपका कच्चा 4 बीघा मतलब 1 एकड़ में आपको इस पे, यदि किसान बंधु ये यदि ज्यादा भी चला जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो है ना अमृत है, जीवामृत मतलब जीवों का अमृत, ये जमीन का अमृत है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इसी शुरू में ही कहा किसान बंधु कि इसको आप सामान्य किसान भी हमारा अपने खेत में बना करके इसका उपयोग करके अपनी जमीन की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बना के रख सकता है।
1: जी तेज प्रताप जी, अभी देखिए रवि की फसलों की बुआई का समय आने वाला है, प्राकृतिक खेती में बुआई से पूर्व बीज को कैसे उपचारित कर सकते हैं?
0: देखिए ये जिस तरह से आप सामान्य हमारा किसान भी जानता है कि भाई अपन जिस तरह से पोलियो का ड्रॉप क्यों अपन बच्चे को पिलाते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना सुरक्षित रहे, ठीक है
1: जी,
0: 2 बूंद पोलियो और हमारा जीवन सुरक्षित, बच्चे का जीवन सुरक्षित, उसी तरह से अपने को क्या करना है, जो बीज है उसको जो है ना सुरक्षित करना है। जब वो जमीन में जाए तो कोई कीड़ा ना लगे, कोई रोग ना लगे, मतलब जब तक उसका जो है ना इम्ब्रियो जिसको कहते हैं, वो उसका भ्रूण जैसा कहते हैं, जब तक वो जो है ना बाहर जमीन से आ जाए, आने तक उसकी सुरक्षा जो है ना बनी रहे, 10 से 12 दिन तक उस बीज की सुरक्षा बनी रहे, उसके चारों तरफ उसका आवरण बना। तो इसको करना क्या अपने सामान्य सी बात है, मतलब बीज को आप जो है ना उपचारित कीजिए। प्राकृतिक खेती में बीज को कैसे उपचारित करना है, आपको क्या करना है कि 5 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर लीजिए। अब 5 किलो देसी गाय के गोबर को आप जो है ना किसी सूती कपड़े में बांध करके और किसी जो है ना पानी में उसको डुबो करके आप जो है ना किसी बर्तन में 10 से 12 घंटे तक जो है ना आप रख दीजिए। और आप जो है ना 50 ग्राम जो है ना चूना लीजिए, 50 ग्राम चूना को भी आप जो है ना 1 लीटर पानी में 10-12 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपने 5 किलो गोबर आप जो है ना पानी में डीप कर रखे हैं, 10-12 घंटे बाद आप उसको निकालिए और उसको जो है ना निचोड़ करके उसका जो रस है उसको आप जो है ना बाहर जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है रस है उसको आप जो है ना निचोड़ करके उसको आप एक बर्तन में आप जो है ना उसको इकट्ठा कर लीजिए। चूनो जो आप भिगो रखे हैं उसको भी आप जो है ना छान लीजिए, छान करके उसका भी पानी उसी जो 5 किलो गोबर से उसमें आप उसको मिला दीजिए। और इसी में आप क्या कीजिए कि आप जो है ना 5 लीटर जो है ना देसी गाय का गोबर मिला लीजिए। अब आपने जो आपने गोबर से जो एक्सट्रैक्ट से जो आप निचोड़े हैं वो 50 ग्राम चूना जो हो गया वो, और फिर उसके बाद आपका 5 लीटर जो है ना गोमूत्र, इन सबको मिला करके अब ये आपका जो है 1 क्विंटल बीज के लिए आपका जो है ना ये सारा मटेरियल आपका तैयार हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, प्लास्टिक के पन्नी आप जो है ना बीज को फैला करके और ये जो बीजामृत आपका तैयार हुआ है बीज के ऊपर चारों तरफ से छिड़क करके उसको अच्छे से दोनों हाथ से मिक्स करके और फिर 1-2 बार 2-3 बार जब तक पूरा बीज भीग ना जाए, उसके बाद हल्का सा जो है ना छाए में ये सुखा करके उसके बाद फसल की बीज की जो है ना बिजाई कर दीजिए आप।
1: बिल्कुल किसान भाई, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। तेज प्रताप जी, प्राकृतिक खेती में कीट प्रबंधन अपन किस तरीके से कर सकते हैं?
0: देखिए ये प्रश्न आपका सही है, जिस तरह से अपन सामान्य हमारा किसान भी कहता है कि भाई प्राकृतिक खेती तो हम कर लें, भाई काटने वाले कीड़े आते हैं, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, तो उनका हम जो है ना निदान कैसे करें। तो आपको करना क्या है, आप इसमें जो है ना बहुत सामान्य सी बात है किसान बंधु, आप जो है ना सबसे अच्छा है कि कीट प्रबंधन के लिए आप जो है ना निमास्त्र बनाइए, आप अग्नियास्त्र बनाइए, आप ब्रह्मास्त्र बनाइए, जैसा कीट है वैसा है आप जो है ना बना लीजिए, जिस तरह से अग्नियास्त्र बना लीजिए, ब्रह्मास्त्र बना लीजिए, निमास्त्र एक सामान्य सा एक आपको जो है ना सबसे पहले मैं निमास्त्र, जिस तरह से रस चूसने वाले जितने कीड़े हैं, जिस तरह से मान लीजिए कि सफेद मच्छर है, आपका जेसिड है, एफिड है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप निमास्त्र अपने घर पे ही बना सकते हैं किसान बंधु, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको जो है एक ड्रम लेना है जैसे आप जीवामृत में ले रहे थे, और उसको आप क्या कीजिए कि उस ड्रम में 100 लीटर पानी ले लीजिए, 5 किलो आप नीम की निमोली या आप जो है ना नीम की पत्ती ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट करके आप उस ड्रम में 100 लीटर पानी में 5 किलो आप नीम की

0: मूली या नीम की पत्ती डाल दीजिए। आप जो है ना 2 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर डाल दीजिए और 10 लीटर आप जो है ना गोमूत्र डाल दीजिए।
1: जी
0: ये डाल करके इनको क्या कीजिए कि आप 4 5 से 7 दिन तक आप इसको सुबह शाम जो है ना सेकिंग कर दीजिए, मतलब उसको चला दीजिए
1: जी
0: डंडे के सहारे। तो ये क्या होगा, ये एकदम जो है ना जो नीम की पत्ती है निमोलू एकदम डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, जैसे ही मान लीजिए कि आपके खेत में कोई जो है ना चूसने वाला कीड़ा सफेद मच्छर जेसिड एफिड दिखे, तो आप क्या कीजिए, यदि मान लीजिए कि कम कीड़ा दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, 5% का मतलब 100 लीटर पानी में 5 लीटर मिला करके और शाम के टाइम स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके खेत में ज्यादा थोड़ा कीड़ा मच्छर मक्खी दिख रहा है तो आप जो है ना 10 लीटर लेकर के निमास्त्र को 100 लीटर पानी में मिला के 10% का हो गया फिर उसको जो है ना स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से ये सामान्य सी चीज है किसानों, प्राकृतिक खेती में आप अपने कीड़ों को भी आप जो है ना निदान उसका हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है सर?
0: बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए प्राकृतिक खेती का मतलब जो हमारे किसान के घर पे जो संसाधन है जो है ना गोमूत्र है उसके गाय का गोबर है, मतलब प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, सब जो है ना मतलब फसल पोषण जो है ना सब अपने को किसान को अपने घर पे ही जो है ना तैयार करना है। और जैविक खेती में क्या है कि अपने को बाहर से जो है ना केंचुए की खाद बाहर से ले सकते हैं, सड़ी गोबर की खाद आप बाहर से ले सकते हैं, जैव उर्वरक जो है जिस समाज के ट्राइकोडर्मा हुआ सुडोमोनास हुआ एजोटोबैक्टर हुआ ठीक है ये सब आपको जो है ना आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन आप जो है ना प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। जैविक खेती में तो आप बाहर से ले सकते हैं ये सब चीजें जो आपको मैंने बताया, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो अपने घर पे ही जो संसाधन है उसी से फसल पोषण जो है ना आपको तैयार करना है।
1: जी, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है सर?
0: देखिए ये अपने को देखिए आज के समय में क्या है किसान बंधु, सब हमारा किसान चाहता है कि हमारा परिवार जो है ना स्वस्थ रहे ठीक है, जो हमारे घर का बच्चा है वो स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ कब होगा, जब हम उसको जो है ना स्वस्थ जो है ना भोजन देंगे। और स्वस्थ भोजन कब मिलेगा, जब हम अपनी जमीन को स्वस्थ भोजन देंगे, मतलब जब हम अपनी जमीन को अपने घर पे जो संसाधन है जीवामृत देंगे, जब हम अपने जमीन को जीवामृत देंगे तो हमारी जमीन क्या होगी, हमारे जमीन में जीवों की संख्या बढ़ेगी, जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो कुछ भी हम जो है जब जमीन को पोषण देंगे तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो क्रिया करके ज्यादा से ज्यादा पोषण फसल को उपलब्ध जो है ना कराएगा। फिर जमीन में जल धारण क्षमता, हमारी जमीन जो है ना पोली होगी, जब हमारी जमीन पोली होगी तो हमारे जमीन को जल धारण क्षमता जो है ना बढ़ेगी हमारी जमीन की, जब जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो हमारी जमीन को पानी नमी जो है ना लंबे समय तक जो है ना संरक्षित रहेगी, तो हमारे जमीन को पानी जो है ना कम देना पड़ेगा। तो इस वजह से किसान बंधु आप सबसे निवेदन है कि आप जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, कम से कम यदि आप अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करें, अपने रिश्तेदार के लिए प्राकृतिक खेती करें, कम से कम आप जो है ना 1 एकड़ तो आप ठान लें, शपथ ले लें कि हमको 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करना है, देसी गाय पालना है।
1: बिल्कुल साहब, तेज प्रताप जी चलते चलते किसान भाई को कुछ संदेश देना चाहते हैं।
0: मैं किसान बंधुओं से करबद्ध निवेदन यही है हमारा कि आप जो है ना कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर एक देसी गाय पालिए और उस देसी गाय के गोबर देसी गाय का गोमूत्र का उपयोग करके आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़िए कि हमारी आने वाली हम अपनी पीढ़ी को, जिस तरह से हर आदमी ये चाहता है कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं, तो आप भी ये प्रयास कीजिए कि आने वाला जो हमारी आपके नीचे की जो पीढ़ी है हम उसको जो है ना शुद्ध और उपजाऊ जमीन जो है ना पीढ़ी को जो है ना दे करके जाए।
1: बिल्कुल, किसान भाइयों अपने प्रोग्राम में जानकारी देने के लिए पधारे हैं तेज प्रताप सिंह जी जो हैं विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टांकड़ा। अपने जानकारी ली प्राकृतिक खेती का महत्व एवं उद्देश्य, अपने प्रोग्राम में आए और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
2: और धन्यवाद कोरो कोनी देव अश्विनी भाई। तो गीत के साथ देशा
3: बिल्कुल।
4: अरे अरे अरे क्या कर रहा है, इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे हैं।
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: गोरबंद नखराड़ो और एक अशी परंपरा जी में आपना जो ढांडा ढोरे बांको भी श्रृंगार कियो जावे बांको भी ध्यान राखियो जावे है। और अश्विनी भाई ध्यान तो राखनो पड़े है टेम को भी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कहो ना भगत का बाया ही मोती निपजे है और समय सारू सब काम होना चाहिए जे। गीत की लहरा में आपा अशा लहर लहर लहराया कि टेम को पतो ही कोनी चाले हो, किसान वाणी कार्यक्रम रो टेम पूरो होते जा रहे है। तो फिर अब चालनो है अपन ने अगला
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम की तैयारी कर, तो अबार लेवा विदा और करा
1: राम
0: राम राम
1: राम सा।
0: सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी जयपुर से अभी आप स्पॉन्सर्ड किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 बजे हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1382वां भाग सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते, हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह,
2: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
2: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
2: जी।
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
2: जी
1: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
2: जी तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
2: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: जी
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
3: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
4: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
3: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
3: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
4: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
3: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
5: महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
3: बादशाह ने कहा,
4: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
3: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
4: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
3: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
4: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
3: बीरबल ने उत्तर दिया,
6: हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती।
3: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन

0: उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: राम सिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ।
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: चलो बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम है, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
2: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं।

0: जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशाले नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूँ असला का। फायर! हुकम सिंह!
4: जी सर।
2: एलएमजी संभाल, राइफल छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
3: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
3: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
4: अच्छा। सर, यही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
4: जी सर।
5: बांध दिया सर। ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
3: संभल कर, संभल कर।
5: सब यहाँ सर टिका लीजिए
3: सर। ऐसे
6: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
6: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
6: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
5: साहब,
6: तुम लोग आगे निकलो।
3: ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा नहीं हो सकता सर, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
6: नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
3: नहीं साहब।
6: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
3: नहीं साहब,
6: नहीं। आदेश, इट्स एन ऑर्डर।

0: अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
2: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
3: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
2: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
1: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजान ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1382वां भाग सुन रहे थे। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनिए सारिका सिंह के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर की गाई ये एल्बम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग समूह स्वर में।

आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग। अभी आपने सुना समूह स्वर में, आइए अब सुनते हैं आबिदा परवीन की स्वर में कार्यक्रम का ये अगला एल्बम सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे आबिदा परवीन का गाया ये एल्बम सॉन्ग। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग। अदनान सामी के स्वर में

अभी आप एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। नीचे पेश है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम घूमर। इसमें सबसे पहले सुनिए रूपचंद मारू का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम घूमर अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 8:45 होने को है। अब आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई है।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 2022 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
4: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
5: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
4: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
6: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
7: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
8: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
7: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपए मिल रहे हैं।
9: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6000 रुपए मिलता है।
7: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@airnewshindi को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
11: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद गजलें। फनकार है हरिहरन।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंद गजलें। फनकार है हरिहरन। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम की अगली गजल।

0: हरिहरन की गायी चंद गजलें अभी आप सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए एक विशेष कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
4: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों

0: की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जाँच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1,194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितम्बर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुँच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कॉम्पल्शन. नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है. उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था. लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1998 से 2004 का जो पहले जो सेशन था एनडीए, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था. उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपो रेट, जो आज हम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था. पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे. तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था. फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था. उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे. तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया. जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था. आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
1: जी.
2: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था. उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे. कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया. बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था. लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया. फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है. तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स वो एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था वो लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं. उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया. और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट में किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था. तो इसके चलते क्या हुआ, 3-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में. तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितना उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आया है, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को कंसोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है, और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए. मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18. आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़. तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया. ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का. नेट एनपीओ रेशियो, उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%. उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है. स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द एक वर्ड सेक्टर वाइज, अगर आप मुझे पूछे एसएमई जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंक सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये एसएमई क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपका पहले बोला उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए, और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था, और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
2: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ही ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाया, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 trillion रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही हुआ था। ये लोन जो पहले था ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स अब डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। 2-3 साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया। हमने एसएमई में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया, अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमी क्रेडिट नीड्स।
1: आपने एसएमईज का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप एसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और आईबीसी के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
2: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मैं आईबीसी लेके आता हूँ। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी को 2016 में आए थे और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे वो करते नहीं था, तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा, तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप एसएमई सेक्टर को बात करें, एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ईसीएलजीए स्कीम बेसिकली लोन गारंटी गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ईसीएलजीएस लेके, आपको अगर पता है कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ईसीएलजीएस में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। और उसके साथ एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए, एक तो फॉर एग्जाम्पल जो एसएमई सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे एसएमई सेक्टर उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे एमएसएमई सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है वहां पर आपका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप दिन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद सर 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें और कुछ सुधार लेके आए और ज्यादा कोर्ट्स बनाए और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी के हाथों में। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आप

0: से एक और विषय में बात करना चाहती हूँ, जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
1: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप पे बिल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखें, कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14-15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रिपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है और पैसा भी उठा सकते हैं और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा ट्विन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
0: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
1: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया, उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका एवरग्रीनिंग बोलते। जब को पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
0: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, अलाइव सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है, जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया, पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
0: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे. पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना. पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके.
1: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था, और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था. रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था. उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उस पर नहीं बढ़े थे. तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है. तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में. तो सबसे बड़ा चीज वो था. दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था. इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. पहले बात है कि रिकैपिटलाइजेशन तो होना था. रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था. इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था. ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज. लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था. आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए. इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है. उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है. तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ. आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक देखें. और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा. तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं.
0: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
1: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं. जो काम आप समझ रहे हैं कि एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं. और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है. तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमी इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं. तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा. और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए.
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है. इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा होगी एफसीएल में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का. आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 यूएस बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया. बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है. जिसे रोड मैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फास्ट. इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं. और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी. उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग. सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड. ये जो करंट जनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे. उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है और ये प्रोसेस जो चलते रहेगा. तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे.
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही. इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए.
1: धन्यवाद.
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक. इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा रूपी एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे. हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं. रात्रि के 10 बजने को हैं. अब आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की

0: तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी तीन तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with a most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी। और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया। और उसके बाद विशाल थिन्नारसू की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया। और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज़्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तार गोला फेंका, लेकिन 4था स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसर

0: दल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 केजी सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 केजी सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान's फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कन्फर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 केजी सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन इबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
0: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।

0: 1-7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2-6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भांबरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
2: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
0: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला केनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं, इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी वहीं पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड

0: ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
2: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां अभी आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुन रहे थे। एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10:20 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।